ठाकुर विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल पड़े हैं, उन राहों पर घर जैसी कोई चीज नहीं। उसकी जिंदगी एक तूफानी नदी है जो दन दनाती हुई एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। ऐसे राही को भूल जाना ही अच्छा है।

ये मौत का शहर है जिन्ना। इस शहर की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा है, और इस अंधेरे में एक दिन तेरे सुमेर को गुम हो जाना है। इससे पहले कि मैं इस अंधेरे में गुम हो जाऊं, मैं तेरी जीती जागती सांस लेती तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुझे वापस जाना होगा जिन्ना, तुझे वापस जाना होगा।

0: हाय।
1: सिर्फ आहें जो भरे उसको आशिक ना कहो, दूर से प्यार करे उसको आशिक ना कहो, गम में चुपचाप मरे उसको आशिक ना कहो, जो जमाने से डरे उसको आशिक।

0: आशिक हो तो
1: अरे जा के दिल भर हो तो
0: के आशिक हो तो ऐसा हो
2: के दिल भर हो तो ऐसी हो
0: जैसे मजनू जैसे फरहान जैसे महिवाल रांझे है जैसा आशिक हो तो ऐसा हो हाँ।

0: गिरधारी लाल अगर हमारा ये राज फाश हो गया तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, फौरन इन लोगों को ले चलना।
1: आखिर सुमेर मेरी अपनी ही औलाद है।
0: लेकिन उसके साथ वो हराम की औलाद भी तो है।

0: डार्लिंग, पिछली बार जब इन्हें देखा तो मांग में सिंदूर नहीं था, अब है।
1: शायद इनका दिमाग ठीक नहीं है।
2: नसीब ठीक नहीं है, पति होके भी हमारे लिए पराए जैसे हैं।
3: पिताजी तो अपने आप को भी भूल चुके हैं, उन्हें तो अपना नाम तक याद नहीं है।

0: पैरों में से शहर अनोखा शहर है एक अंबाला। अंबाले की एक सुंदरी रंग था उसका काला। पंजाब के छैले ने
1: छके।

0: अंग्रेजी बोलता है सीधा साधा बोल।
1: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुमने फिर इंजन चला देगा।
2: देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हरामखोर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर। एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हंसूंगा। उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया, ठीक है। मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे ने, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का। देखा हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे,
3: सोता है बहुत जागा है ना।
2: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है

0: भोले वाले ललुआ भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बाबा।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।